0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह अमरेश जी जरा इधर आइए इधर आए, दूर की कौड़ी, वाह वाह वाह जल्दी आइए मुनीम जी।
1: लाला इधर तो हिसाब में 3 पाई का घाटा पड़ गया घाटा।
0: अरे मोटू हजूरदास की पाई कहाँ जाएगी, इधर आकर तो चौपाई सुन। चौपाई?
1: चौपाई?
0: अरे हाँ हाँ चौपाई यानी के रुबाई। खूब लिखा है लिखने वाले ने मुनीम जी।

0: दसानर को जाए। बोलो राम क्यों मनीम जी कैसा कहा है? बकवास है,
1: बिल्कुल ठीक। आगे सुनो, आगे मनीम जी कोई नारा

0: बाबा बाबा
1: औरत चराग है
2: औरत है जिसका नाम मोहब्बत का बाग है औरत है जिसका नाम मोहब्बत का बाग है
0: डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर डर

खातिर तनको देखे नारी गीत बजार अंदर के बसैया अंदर के बसैया देवी बजार ना अपरम पार कभी ना अपरम पार गीत के सर पर ताज के जेवर पत्नी उधरे खाले घर में बंदे पत्ते खाए मौज करें पंडाल मथुरा प्राचीन सुने हो गए मथुरा प्राचीन सुने हो गए घर में तोड़ बाजार मेला अपरंपार बदली मेला अपरंपार जो खेतों में फसल उगावे उन्हीं पखावे काल अरे अपनी समझ ना आवे रे भैया भगवंती ये काल जितना सोचा उतना उलझे उतना उलझे जितना सोचा जितना सोचा मान लिया फिर हार अपधंकार।

0: उछल जंजीरे जागी कोई तकदीरे लूट पे कब तक पहरा देगी रंग लगी होगी शमशीरे
1: रंग लगी होगी शमशीरे
0: सकता इस दुनिया में जो सबको मंजूर।

0: सर्दी का बुखार बुरा बनिए का उधार बुरा पैसे का है प्यार बुरा कह गए कहने वाले
1: कह गए कहने वाले कहने वाले कहने वाले कह गए कहने वाले कहने वाले कहने वाले
0: सर्दी का बुखार बुरा बनिए का उधार बुरा पैसे का है प्यार बुरा कह गए कहने वाले
1: जमा जो किया था तिजोरी में छुपा के जमा जो किया था तिजोरी में छुपा के ले गए वो मेरे भाई चोरी चोरी आके ले गए वो मेरे भाई चोरी चोरी आके हो चोरी चोरी आके
0: सोया चौकीदार बुरा नींद का कुमार बुरा पैसे का है प्यार बुरा कह गए कहने वाले
1: कह गए कहने वाले कहने वाले कहने वाले कह गए कहने वाले
0: सर्दी का बुखार बुरा बनिए का उधार बुरा पैसे का है प्यार बुरा